0: वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रस्तुत छ सुविशु अपर्च्युनिटी। यस योजना अन्तर्गत ग्राहकहरूले पाउनुहुनेछ 25 MBPS इन्टरनेट र क्लियर टिभीको फुल HD प्याकेज प्रति महिना मात्र ₹1040 र 65 भन्दा बढी HD च्यानल भएको क्लियर टिभीको प्याकेज प्रति महिना ₹221। साथै दामी म्युजिकको प्रिमियम प्याकेज 3 महिनाका लागि निशुल्क। शर्त र नियमहरू लागू हुनेछन्। थप जानकारीका लागि www.subisu.net.np। सुबिसु।
1: हाय, के गर्ने होला अब? सुगर पनि बढ्दैछ, थाइरोइडको समस्या अझ छुट्टै छ। कति ठाउँमा देखाएँ तर भएन।
2: ए, तिमी यति चिन्तित किन? के भयो फेरि?
1: के भने नि, डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो, अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ।
2: ए, अब चिन्ता लिनु पर्दैन, मैले राम्रो खबर सुनेको छु।
1: कस्तो खबर?
2: अब प्रत्येक दिन सुगर, थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही, MD इन्टरनल मेडिसिन TU, एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गङ्गाराम हस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ।
1: ए, साँच्चै?
2: अझ सुन, महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ।
1: ए, त्यो त झन् राम्रो
2: हो नि। डाक्टर पुनम आचार्य MBBS, MD KU, IVF स्पेसलिस्ट इन्डिया र डाक्टर सुरज राज भट्टराई MBBS, MS KU, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनबाट सेवा पाइन्छ।
1: वाह, अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो।
2: अझै अरू सेवाहरू पनि छन्। दैनिक ओपिडी सेवा, गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा, भिडियो एक्सरे, ECG तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
1: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
2: हो त, अब ढिला नगर, जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न।
1: हजुर, आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, BP चोक, नेपालगञ्ज। फोन नम्बर 081-531-860 र 081-531-861।
2: अब चिन्ता होइन, समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।
3: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
2: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से OPD सेवा हो, एक साथ हैं तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाहा जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
2: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू MediCity अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
3: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क OPD सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
2: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-239-80-665 और 98-482-80-465।
4: यो कृष्ण सार FM
5: 94 MHz, कृष्ण सार जत्ती के तेज़।

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जतिको तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जतिको तेज

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: टाइम चेक
2: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: जनता केबल 5 दशक देखी।
1: होइन कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
2: ओहो बाजे, अब उता आइन, ठ्याक्कै यता हेर्नुहोस् त पूर्वपट्टि।
3: हाम्रा सेवाहरू: इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग

0: प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
1: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
0: हो त, अब ढिला नगर, जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न।
1: हजुर, आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बिपी चोक नेपालगञ्ज। फोन नम्बर 081531860 र 081531861।
0: अब चिन्ता होइन, समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।
2: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
3: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवानिवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ENT विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ENT कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको 7 दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 98580-30479 र 98480-21380।
4: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
5: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि। पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
4: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
5: 24 घन्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै NICU, PICU, ICU, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसूति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
4: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
5: कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
4: सम्पर्क नम्बर 081535717।
6: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
7: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बिरामी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। BTE, CIC, RIC जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
6: अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
7: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे, दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगञ्ज फुलटेग्रा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाँके। संचालक पूरन चौधरी। सम्पर्क नम्बर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
8: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
6: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
7: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से OPD सेवा हो, एक साथ हैं तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाह जाता है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
6: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
7: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
6: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
7: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
6: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
7: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
6: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते,
7: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हरेक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवेक जानकारी भी करावा जाता है।
6: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
7: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-239-80-665 और 98-482-80-465।
9: Back to back, back to back.
10: In this song,
9: on. Stay tuned.

अपर्च्युनिटी 1900 वार्षिक उत्सव को अवसर में प्रस्तुत सुविशु अपर्च्युनिटी इस योजना अंतर्गत ग्राहक 25 MBPS इंटरनेट र क्लियर टीवी को फुल HD पैकेज प्रति महीना मात्र रु 1040 में 65 भन्दा बड़ी HD चैनल भएको क्लियर टीवी को पैकेज प्रति महीना रु 221 में साथ ही दामी म्यूजिक को प्रीमियम पैकेज 3 महीना का लागि निःशुल्क शर्त र नियमहरू लागू हुने छन् थप जानकारी का लागि www.subisu.net.np subisu

0: अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखब सच्चा आत्मविश्वास होए। वही से तो नेपाल परिवार नियोजन संघ बाके शाखा विगत लंबा समय से आप लोगन के सेवा में यहाँ समर्पित है।
1: हमरे यहाँ पूर्ण गोपनीयता के साथेन गर्भपतन परिवार नियोजन के साधन बच्चेदानी के मुँह और स्तन कैंसर के परीक्षण और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध है।
0: विशेष सुविधा
1: अब हरेक इतवार के दोपहरे 3 बजे से 5 बजे तक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदेश आचार्य के द्वारा विशेष परामर्श और उपचारों भी पावा जाए।
2: देर न कीन जाए, आज स्वास्थ्य परामर्श लीन जाए। पता नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 रामलीला रोड नापी शाखा के अगारी। फोन नंबर 081 530 598।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: गोपालगंज में ही अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। वहाँ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उसके साथ टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जाता है।
1: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है।
0: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037।
2: नींद
3: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
4: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
3: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
4: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 9848020697 9858023697 और 9804483697।
1: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
3: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही?
4: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहें। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए, वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होता है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
3: सही, वहाँ का सेवा मिलते है तो भैया?
4: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
5: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता करके तहे दिल हुआ जाए।
4: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ संपर्क नंबर 9769411786 9824923377।
1: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
6: Back to back. In this song on. Stay tuned.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: रंग बहार रंग बहार
1: बर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इन्चको स्मार्ट टिभी रेफ्रिजरेटर वाशिङ मसिन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि घर रंगाऊ खुशी बनाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ
0: बर्जर पेन्स
2: अया कान दुखेर हैरान भइराछ के गर्ने कहाँ जाने होला
3: बहिनी किन चिन्ता लिनुहुन्छ बिर्नोज कान स्वास्थ्य सामुदायिक सेवा हुँदाहुँदै हाम्रा सेवाहरू नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ तथा कान स्वास्थ्य प्राविधिकद्वारा दैनिक रूपमा कानको परीक्षण जाँच गर्नुका साथै अपरेसन गरिन्छ कान नसुन्ने बिरामीहरूको लागि कान सुन्ने विभिन्न मेसिनहरू सहुलियत शुल्कमा उपलब्ध गराइन्छ कानमा पर्न गएका विभिन्न प्रकारका बाहिरी वस्तुहरू कानको कानेगुजी निकाल्ने कानेगुजी तथा अन्य कानका फोहोर वस्तुहरूको सरसफाई समेत गरिन्छ लामो समयसम्म कान पाकिरहेमा वा पिप आइरहेमा कान चिलाउने कान दुख्ने कान कराउने कान हुने कानबाट तरल पदार्थ निस्किने कान कम सुन्ने बिरामीहरूको कान परीक्षण गर्नुका साथै प्राथमिक कान उपचार तथा आवश्यक सल्लाह सुझाव दिइन्छ
4: साथै प्रयोगशालाको पनि व्यवस्था रहेको छ अस्पताल शनिबार दिउँसो 1 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ
3: विस्तृत जानकारीको लागि ब्रिनोज कान स्वास्थ्य सामुदायिक सेवा फुलचेक्रा 5 नेपालगंज सम्पर्क फोन नम्बर 081530244 98580 81244
5: नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर ओआरद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ एनएमसी 19393 बिडिएस दिल्ली एफएजिसी मणिपाल सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब
6: विशेषताहरू दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने किरा लागेको दाँतलाई भर्ने दाँत निकाल्ने दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने मेटल क्राउन बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने सबै उपचारहरू दूरबिनबाट गरिने डिजिटल एक्सरे सेवा
3: सम्पर्क गणपति क्लिनिक सुर्खेत रोड नेपालगंज नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने पासङलाम रोड जाने बाटोमा फोन नम्बर 081531366 र 98085449451
7: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला
8: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ
7: हो र यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि
8: 24 घन्टा इमर्जेन्सी सेवा दैनिक ओपिडी सेवा दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियू पिआइसियू आइसियू हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसुति सेवा पनि यही उपलब्ध छन् अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि
7: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो
8: कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि
7: सम्पर्क नम्बर 081535717
9: मौसम पूर्व अनुमान सम्बन्धी के सूचना
10: आवश्यक सतर्कता और पूर्व तैयारी अपनावे खातिर अनुरोध नेपाल मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार असोज 9 गते शुक्रवार से असोज 11 गते इतवार तक गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के कुछ स्थान में यहाँ भारी से सैगर भारी बरसात और 1-2 स्थान में यहाँ अति भारी बरसात के समेत संभावना रहा है
9: वही मेरे के कोसी मधेश बागमती और सुदूर पश्चिम प्रदेश के सैगर स्थान में यहाँ भारी से भारी और कर्णाली प्रदेश के थोड़े स्थान में यहाँ भारी बरसात के संभावना रहा है।
10: भारी से सैगर भारी बरसात के कारण बाढ़ पहिरो पहाड़ से और अन्य जगह से चहला वाला माटी बह सकत है और शहरी और तराई क्षेत्र में यहाँ डुबान के जोखिम भय कारण से आवश्यक सतर्कता अपनावे और पूर्व तैयारी के खातिर अनुरोध करा जाते है। उ अवधि में यहाँ अत्यंत जरूरी न हो तो दूर और रात के समय में यहाँ यात्रा बिल्कुल न की जाए।
9: आकस्मिक बाढ़ आई सकत है। कुलवा नाला के नेरेन बस्ती पहिरो के जोखिम वाला स्थान और कुलवा नाला के किनारे बस्ती के बासिंदा लोगन सैगल चलाक रहा जाए।
10: बरसात और बाढ़ के बारे में जानकारी ले खातिर 1155 में यहाँ संपर्क करा जाए। साथेन विपद में यहाँ मदद मांगे खातिर 1234 में यहाँ नेपाल प्रहरी के हटलाइन 100 और सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के हटलाइन नंबर 1114 में यहाँ संपर्क करा जाए। नेपाल मौसम विज्ञान विभाग राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण और व्यवस्थापन प्राधिकरण और नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी के सामाजिक संजाल से प्रकाशन प्रसारण होए वाला अध्याय अवधि पूर्व अनुमान पूर्व सूचना चेतावनी संबंधी जानकारी लेते रह जाए। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी।
7: हजुरबालाई लामो समयदेखि कानको समस्या छ, नेपालगञ्जमा भरपर्दो र विश्वासिलो अस्पतालका लागि कहाँ जाने होला?
8: ए त्यसो भए त चिन्तै लिनु पर्दैन नि, नेपालगञ्जमै रहेको बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केन्द्र छँदैछ नि। यहाँ त अनुभवी विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिकबाट हरेक दिन कान परीक्षण गरिन्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, यहाँ त लामो समयदेखि कान पाकिरहने जीर्ण रोग, काने ढुसी, कान चिलाउने, कान कम सुन्ने, कान डम्माउने बिरामीहरूको उपचार तथा परामर्श र लामो समयदेखि कान पाकिरहँदा कानको जालीमा प्वाल परेको, कान हड्डी खाने रोगको शल्यक्रिया अपरेसनबाट उपचार गरिन्छ। साथै कान कम सुन्ने बिरामीहरूका लागि कानमा लगाउने सस्तोदेखि महँगोसम्मका विभिन्न मोडेलका कानका मेसिन हियरिङ एड बिरामीहरूको चाहना अनुसार उपलब्ध गराइन्छ। बिटिई, सिआइसी, आरआइसी जस्ता मेसिनहरू पनि यही उपलब्ध छन्।
7: ए त्यसो भए हजुरबालाई त्यहाँ लगेर उपचार गराउँदा स्पष्ट सुन्न सक्नु होला त?
8: अवश्य, समयमा उपचार गरेपछि धेरै सुधार सम्भव हुन्छ।
7: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केन्द्र,
8: नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 फुलटेक्रा आर्मी ब्यारेक सामुन्ने राप्ती रोड बाके, सञ्चालक पुरन चौधरी।
7: सम्पर्क नम्बर 9884202697, 9885823697 र 9800143697।
8: बहिरोपण निवारण कार्यक्रममा सहभागी हौ, नियमित कानको जाँच गरौ।
11: यो कृष्ण सार एफएम
12: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज।

0: सित अब हामी ढुक्क भएर न्यू कैलाश दर्शन होटलमै कार्यक्रम गर्नेछौँ।
1: हजुर, न्यू कैलाश दर्शन होटल नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 राजा। सम्पर्क फोन नम्बर 98487 4666।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: यो कृष्णसार FM
0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
2: कृष्णसार FM हो यो कृष्णसार FM
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
4: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.
5: Samay badaliyo. Pusta feriyo. Tara saath. Saath ustai cha.

0: जनता केबल 5 दशक देखी।
1: यो कृष्ण सार FM
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्ती के तेज़।

0: अया कान दुखेर हैरान भइराछ, के गर्ने कहाँ जाने होला।
1: बहिनी किन चिन्ता लिनुहुन्छ, बिर्नोज कान स्वास्थ्य सामुदायिक सेवा हुँदाहुँदै हाम्रा सेवाहरू नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ तथा कान स्वास्थ्य प्राविधिकद्वारा दैनिक रूपमा कानको परीक्षण जाँच गर्नुका साथै अपरेसन गरिन्छ। कान नसुन्ने बिरामीहरूको लागि कान सुन्ने विभिन्न मेसिनहरू सहुलियत शुल्कमा उपलब्ध गराइन्छ। कानमा पर्न गएका विभिन्न प्रकारका बाहिरी वस्तुहरू, कानको कानेगुजी निकाल्ने, कानेगुजी तथा अन्य कानका फोहोर वस्तुहरूको सरसफाई समेत गरिन्छ। लामो समयसम्म कान पाकिरहेमा वा पिप आइरहेमा कान चिलाउने, कान दुख्ने, कान कराउने, कान डम्प हुने, कानबाट तरल पदार्थ निस्किने, कान कम सुन्ने बिरामीहरूको कान परीक्षण गर्नुका साथै प्राथमिक कान उपचार तथा आवश्यक सल्लाह सुझाव दिइन्छ।
2: साथै प्रयोगशालाको पनि व्यवस्था रहेको छ। अस्पताल शनिबार दिउँसो 1 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ।
1: विस्तृत जानकारीको लागि ब्रिनोज कान स्वास्थ्य सामुदायिक सेवा फुलचेक्रा 5 नेपालगंज, सम्पर्क फोन नम्बर 081530244 98580-81244।
3: आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु नै साँचो आत्मविश्वास हो। त्यसैले त नेपाल परिवार नियोजन संघ बाँके शाखा विगत लामो समयदेखि यहाँहरूको सेवामा समर्पित छ।
4: हामी कहाँ पूर्ण गोपनीयताका साथ सुरक्षित गर्भपतन, परिवार नियोजनका साधन, पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सरको परीक्षण तथा यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श सेवा उपलब्ध छन्।
3: विशेष सुविधा अब प्रत्येक आइतबार दिउँसो 3-5 बजेसम्म स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्देश आचार्यद्वारा विशेष परामर्श र उपचार पनि पाउनुहुनेछ।
4: ढिला नगर्नुहोस्, आजै स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श लिनुहोस्। ठेगाना नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 रामलीला रोड नापी शाखा अगाडि,
3: फोन नम्बर 081530398।
5: सोचे भन्दा सस्तोमा हाई क्वालिटीका सोफा र फर्निचर चाहियो, आउनुहोस् सोफा हब नेपालगञ्ज।
6: हरेक सामानको खरिदमा 1,000-20,000 छुट, 10-15 वर्षसम्मको वारेन्टी, साथै फ्री डेलिभरीको सुविधा पनि।
7: अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ।
5: स्थान राजा चोक राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको अगाडि,
6: सम्पर्क 97051148 70।
5: सोफा हब नेपालगञ्ज,
6: विश्वासमा नम्बर 1,
5: क्वालिटीमा सबैभन्दा बेस्ट।
8: उपहार
9: उपहार जित्ने मौका पाउनुहोस्।
10: साथै 65 इन्चको स्मार्ट टिभी, रेफ्रिजरेटर, वासिङ मसिन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि।
11: घर रङ्गाऊ, खुशी बनाऊ, उपहार जित्ने अवसर पाऊ।
9: बर्जर पेन्स।
12: मौसम पूर्व अनुमान सम्बन्धी के सूचना,
13: आवश्यक सतर्कता और पूर्व तैयारी अपनावे खातिर अनुरोध। नेपाल मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार असोज 9 गते शुक्रवार से असोज 11 गते आइतवार तक गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के कुछ स्थान में यहाँ भारी से सैगर भारी बरसात और 1-2 स्थान में यहाँ अति भारी बरसात के समेत संभावना रहा है।
12: वही मेरे के कोसी, मधेश, बागमती और सुदूर पश्चिम प्रदेश के सैगर स्थान में यहाँ भारी से भारी और कर्णाली प्रदेश के थोड़े स्थान में यहाँ भारी बरसात के संभावना रहा है।
13: भारी से सैगर भारी बरसात के कारण बाढ़, पहिरो, पहाड़ से और अन्य जगह से चहला वाला माटी बह सकत है और शहरी और तराई क्षेत्र में यहाँ डुबान के जोखिम भय कारण से आवश्यक सतर्कता अपनावे और पूर्व तैयारी के खातिर अनुरोध करा जात है। उ अवधि में यहाँ अत्यंत जरूरी न हो तो दूर और रात के समय में यहाँ यात्रा बिल्कुल न की जाए।
12: आकस्मिक बाढ़ आई सकत है। कुलवा नाला के नेरेन बस्ती पहिरो के जोखिम वाला स्थान और कुलवा नाला के किनारे बस्ती के बासिंदा लोगन सैगल चलाक रहा जाए।
13: बरसात और बाढ़ के बारे में जानकारी ले खातिर 1155 में यहाँ संपर्क करा जाए। साथेन विपद में यहाँ मदद मांगे खातिर 1234 में यहाँ नेपाल प्रहरी के हटलाइन 100 और सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के हटलाइन नंबर 1114 में यहाँ संपर्क करा जाए। नेपाल मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण और व्यवस्थापन प्राधिकरण और नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी के सामाजिक संजाल से प्रकाशन प्रसारण होए वाला अध्यावधिक पूर्व अनुमान, पूर्व सूचना, चेतावनी संबंधी जानकारी लेते रह जाए। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
4: हाय के गर्ने होला अब

0: रंगाओ दे देश मेरो एवरेस्ट
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै देश।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी